जिस पावे स्वार्थी होए हर चरण कमल मकरंद लोग मंगल मोहे प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंग को होए जाते तेरे नहीं वसा।

पण जे को कथाय तयंत नंद तथा लो अलो आकार जिव जो हुकम तिवै तिवकार विखै विकसै कर विचार नानक कतना करड़ा सार जत पाव हरा धीरज सुनियार वैरण मत वीद हथियार पौ खलागन तपताऊ भांडा पाऊ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहार। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत।

नृसृक हैं, नृलंब हैं, असंभ हैं, अगम्य हैं, अजम्य हैं, अपूत हैं, अशूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबह है, अगह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग पर्यात छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान मान्य नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे समस्ति बेपूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोग ऐश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणि नमो अस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमी अपोगी अपोक्ते नमो जोग जोगे स्वर परम जोगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रे देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सासांग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोग्य नमो अस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो अष्टेष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समस्तल निवासी सदा सिद्धदान बुद्धदान बृद्धकर्ता दूरदर्दं अगंग ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं पुष्पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं शेदियपेदियनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तसतहमं तेरा जोर चाचरी शंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग पर्यात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्त्वं नयनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजी नमस्त्वं अपंजी नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराज नमो साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो

tropezar, que sarvatra manes devam pradanyek, sarvatra japyek, sarvatra thapyek, sarvatra panyek, sarvatra manyek, sarvatra indrayek, sarvatra chandrayek, sarvankalime ke parma bahime ke akala alame ke sahaj kalame, ke husnul wajuh hai tamamul rujuh hai hame sul salam mein salikhat moda mein gani mulshikast hai gribul parast hai bilandul makan hai jameenul jamane tamidul tamam mein rizul nindan hai hariful aji mere jaik yakeen hai anek ultrang hai abhed hai abhang hai ajizul niwaz hai gani mulk raj hai nirukt swarup hai trimukt vibhut hai प्रभोगता प्रवाह है सुजोगता सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो प्राज है सदा सर्व स्वाज है समस्त सलाम है सदैव लकम है निर्बाध स्वरूप है आगाध है अनूप है उंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध्य गंजे अगाध्य सुपंग सर्वभाग्य सुसर्वानुरागे सुसर्वा अनुराग है त्रिभुक्त स्वरूप है अशुज है अशुत है किन्नर कुंप्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरोक्त प्रवाह है सदा सदैवं सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयोगता अनुप है निरोक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयोगता अनुप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंत है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चर प्रशांत है प्रसाद सर्वंगता सर्वंगता सर्वंग्याता सर्वंग्याता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं योगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत है प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तत् न मत न जात न पत नृसाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शंत प्रसाद के जा हरजूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुलो सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के गामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहंद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हिरासुल फिकन है हिरासुल फिक हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है गंजुल गनीम है रजाय करीम है समस्तुल जुबा है के साहिब की राह है के साहिब की राह है के नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है के सर्वुल गुवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीस है समस्तुल अदीस है आदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीन उल जमा है अमीकुल माँ है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचन प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रवाह है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मद पार शंत है प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम मर बरया गंज हर नर पर पन्यन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर मंडन भवनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम मन छे जियांगा सुनि अपंग उपमा पार गात मेत उधार जल थल अमन दिसव सपन जल थल महंत दिसव स्मियन तन भवन आस त्रितर तुरा सजान बाहु एक सदा हो अंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुर बर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम छिज गात अजिजना बात
ਆਜਿਜਨਾ ਬਾਤਨ ਝੰਜ ਗਾਤਨ ਰੰਜ ਬਾਤਨ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰਨ ਠੱਟ ਅਪਾਰ ਅਡੀਠ ਧਰਮਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਣਬ੍ਰਣ

करुणालय है, अर्कालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, तृत के तन है, जग के कर्ण है, मनमानी है, जग जानी है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपासी है, सर्वनाशी है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश रहे, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है, करुणा कर है, जपा जप है, अथपा थाप है, आकृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणीकृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजवाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, कलकायक है, विश्वम्पर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, भव भंजन है, अर्गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात शांत

तीर्थ नाम दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है भेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत धार सब बैसो विचार हजार को देखा है। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रत्ती बिनु एक ना लेखा है।

ना हलाएंगे। तोर मरी तोर अरीर मरोर मवासन, तोर अरीन मरोर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे श्री पद श्री।

मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हार सुबत नहीं चकचार लवैया, साहिब श्री सबको सिरना एक जाच का अनेक सो एक देवैया। दान उदेफ निन्न साचर भूत भविख भवान, जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बोपन खपेंगे, सास मुह प्रसन्न फिर जगत

अंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पात अंत फसे जम फास परेंगे जिन्नर श्री पथ के प्रसाद

ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो, बैस बितायो, साच कहूं सुन ले हो सब। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, काहू ले पाहन पूज धरियो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में।

तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज, ब्रह्मा जू थियो जमन काल, सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल

नमस्कार तस्वी को हमारी सकल प्रजाजनी आप सवारी सेवकन को सावकन सुख दियो सत्रन को परमो बद कियो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पिशानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिशान कट कट के पट पट की जान जब युद्ध करख करा करता रा प्रजा तर तब दे अपारा जब या करख कर तो हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन जेते बदन सिर सब तहरा आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरह निरालम जानत भेद भेद अर आलम।

कै रूप अरूप स्वरूप पारंग भयो राव कहीं भूपाय अंड जेर जसे तिजकिनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहू फूल राजा हुए बैठा कहू सिमट भयो शंकर अकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए चंप होया जुगा स्वरूप सुयंप। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगर हो दोष्ट जिते उठपत उत्पाता सकल मलेश करूरन कहता। जी अस तुई तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख्त हुए मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्या है ताकि काल निक नहीं है रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्टन जाहि ने हरि हो ताकि ताप तन कमय हरि हो रित सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह श्व सके न कोई।

भाई संबत सत्रह सहस भणिजय अर सहस फुंतीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुतद्रो ग्रम सुधारा सवैया।

माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये, मनो क्यों विसारिये, एवड दाता जे अगर मैं आहार पहुंचावे उसनु क्यों पोए न सकी जिसनु वो अपनी लो लावे। अपनी ले व्यापे लाए गुरमुख सदा संभालिए, कह नान केवड़ दाता सो क्यों मनो विसारिये। जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जे ही करते खेल रचाया जात स्पाणा ता जम्या। परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोहि उपजै।

साम कहे स्तंभ स्वामी सच में असे सच रहे सब को सच समावेरे कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सू नैल प्राश्त जाए नानक तो मुखंत्र पाए।

सो कहो टल गुर सिविय एनु सहज सुभाई दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाई सतनाम वाहिगुरु साहिब जी टोडी महला पंजाब

गौरे नमः श्री गरुदेवे नमः अष्टपदि काल कलेश तन माहे मटावो नाम जपत गणत अनेक किन्ने राम नामे की आखर ताकि महिमा गनी ना आवे नान कौन संग मोहे दारो भगत जना के मन बस राम रहाओ प्रभु कै सिमन दुख जम नस प्रभु कै सिमन दुश्मन डरे प्रभु कै सिमन आनंदन जागे प्रभु कै सिमन दुख ना संतापे सरवन दान नानक हर रंग प्रभु कै सिमन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमन वैंसे दूजा प्रभु कै सिमन दहगे मानी प्रभु कै सिमन सुफल फला नानक ताके लागू पाए प्रभु कै सिमन उदरे मुचा प्रभु कै सिमन सब को सुजै प्रभु कै सिमन पूर्ण आसा अमृत नावरद माहे समाए नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरै से पत बनते प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै सदा मनासी नानक जन की मंगैर वाला प्रभु को सिमरै तन सदमलिहारी प्रभु को सिमरै तन सुख बिहावे प्रभु को सिमरै तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु कै सिमन कहू ना झूरे प्रभु कै सिमन सह समान।

राष्ट्रपति रमैया के गुण चेत परानी जेंतु सासवा शिंगारिया बाल व्यवस्था तुझे प्यारे दूध व्यर्द पया ऊपर साख सैन ये निर्गुण गुण कछु न बूझे यह प्रसाद तारी ऊपर सुख बसै जय प्रसाद पीवे शीतल जला पवन जय प्रसाद भोगे सब रसा दीने हस्त पाव कर नित रसना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे आद अंत जो राखन हार जाकी सेवा नवनिध पावे जो ठाकर सद सदा हजूरे जाकी टैल पावे दरगे मान सदा सदा ए भूलन हार रतन त्या कौडी संग रचै जो छड़ना सो अस्त्र कर माने छोड़ जाए तिसका श्रम करे चंदन लेपो तारे तोए अंध कूप में पतत बिकराल करतूत पशु की मानस जात बाहर पेख अंतर मल माया

0: जह प्रसाद छति ही अमृत खाए।
1: तिसा कर को रख मन माए।
0: जह प्रसाद सुगंधन तिल लावे।
1: तिसको सिमरत परम गत पावे।
0: जह प्रसाद बसे सुख मंदर।
1: तिसे त्याए सदा मन अंदर।
0: जह प्रसाद गृह संग सुख बसना।
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना।
0: जह प्रसाद रंग रस भोग।
1: नानक सदा त्याए त्यावन जोग।
0: जह प्रसाद पाठ पटंबर हडावे।
1: तिसे त्याग कर तवर लवावे।
0: जह प्रसाद सुख सेज सुहिजे।
1: मन आठ पैर तांका जस गावीजे।
0: जह प्रसाद सब को माने।
1: मुख तांको जस रसन बखाने।

0: सनेह कर नाथ।
1: जय प्रसाद पीठे बिस्माग।
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना।
1: जय प्रसाद सुख सहजे वसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चले।
1: जय प्रसाद सब पूरन फल है।
0: जय प्रसाद परम गत पावे।
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे।
0: ऐसा प्रभु त्याग अबरकत लागो।
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार।

0: साध के संग मुख उज्जल होत,
1: साध
0: के संग मिटे अभिमान,
1: साध
0: के संग बुझे प्रभ नेरा,
1: साध संग सब होत नवेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक ऊपर जतन,
0: साध की महिमा वरने कौन पराने,
1: साध की शोभा ब्रह्म में समानी,
0: साध के संग अगोचर मिले,
1: साध के संग सदा पर,
0: साध के संग आ वह पस पंचा, साध संग है सबकी रेन,
1: साध के संग मनोहर वह,
0: साध के संग न कत हों तावे,
1: साध संग असत मन पावे,
0: साध के संग माया ते पिन,
1: साध संग मान सर्व
0: सत्संग, साध संग दुश्मन सब मीत,
1: साध के संग महापनीत,
0: साध संग किस्यो नहीं बैर,
1: साध के संग न बीगा पैर,
0: साध के संग ना ही को मंदा,
1: साध संग जाने परमानंदा,
0: साध के संग ना ही हो ताप,
1: साध के संग तजे सब
0: आप, आपे जाने साध बढ़ाए,
1: नानक साध प्रभु बनियाए,
0: साध के संग ना कब हो तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बस्त अगोचर लहे,
1: साध के संग अजर सहे,
0: साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साध के संग
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निदान,
1: नानक साधु के करवान,
0: साध के संग सब कुल उधारे,
1: साध संग साजन मीत कुटुंब निसारे,
0: साधु के संग तन पावे,
1: जिस तन ते सब को बरसावे,
0: साध संग धर्म राय कर सेवा,
1: साध के संग शोभा सुर देवा,
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध के संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्व थान गम,
1: नानक साध के संग सब जन,
0: साध के संग ना ही कुछ काल,
1: दर्शन पेट तो होत निहाल,
0: साध के संग कुलूखत हरे,
1: साध के संग नरक पर हरे,
0: साध के संग इहा उहा सुहेला,
1: साध संग ईश्वर कर मेला,
0: जो इच्छा सो ही फल पावे,
1: साध संग तीर्थ का जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे,
1: नानक उतरे साध सुन,
0: साध के संग सुनो हर नाओ,
1: साध संग हटके गुण गाओ,
0: साध के संग न मनते बिसरे,
1: साध संग सर पर निस्तरे,
0: साध के संग लगे प्रभु मीठा,
1: साध के संग कट कट दीठा,
0: साध संग पे आज्ञाकारे,
1: साध संग पे
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध पेटे संजोग,
0: साध की महिमा वेद न जान है, साध की उपमा तह गुनते दूर,
1: साध की उपमा रही पर,
0: साध की शोभा का नाही अंत,
1: साध की शोभा सदा व्यंत,
0: साध की शोभा ऊंचते ऊंची,
1: साध की शोभा

0: ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया
1: ब्रह्म ज्ञानी के कुछ परा न पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि रक्तवासी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल चित्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं मिलास
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो पला
1: ब्रह्म ज्ञानी सो पल पला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल आधार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी

0: ब्रह्म ज्ञानी को जाने भेद,
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या ना जाए अदाखर।

0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण मुक्त दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी

0: राष्ट्रपति जिसके अंतर राज अभिमान जो जाने मैं जोवन बंत आपस को कर बंत कहाव है तन भूमिका जो करे गमान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसाव है तनवंता हुए कारगर भाव है वो लश्कर मानुख ऊपर करे आस सब ते आप जाने बलवंत किसे ना बदे आप अहंकारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान कोट कर्म करे हो तार है अनक तपस्या करे अहंकार अनक जतन कर आत्म नहीं ध्रुव है आपस को जो पला कहाव है सर्व की रीण जाका मन होए
1: नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कछ हुए
1: तब इसको सुख नाही कोए
0: जब है जाने मैं कछ करता
1: तब लग गौ जोन में फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग निचल नाही जीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग तर्म राय देश जाए
0: परम कृपा ते बंधन टुटै
1: गुर प्रसाद नानक हो छुटे
0: सहज कटे लख को उठता है
1: तनावे माया पाचे पावे
0: अनक भोग बिख्या के करे
1: न तरतावे खप खप मरे
0: बिना संतोक नहीं को राज्य
1: स्वप्न मनोरथ बिरते सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़ पापी किसे प्राप्त होए
0: कर्ण करावन आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: कर्ण करावन करने हार जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप
0: जो कछ किन्नो सो अपने रंग
1: सबते दूर समूह के संग
0: बुझा देखे करे बबेक
1: आपे एक आपे अनेक
0: मरे ना वैनसे आवे ना जाए
1: नानक सदी रहा समाए
0: आप अवदेशे समझे आप
1: आपे रचिया सबके साथ
0: आप किन्नो अपन वस्तार
1: आपके सोचकाओ करने हार
0: उसते पेन कहो कुछ होए
1: तांत नांतर एक सोए
0: अपने चलत आप करने हार
1: करे रंग
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नानक कीमत कह ना जाए
0: सत सत सत प्रभ स्वामी
1: गुर प्रसाद किने बखियाने
0: पला पला पला तेरा रूप
1: अति सुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी
1: कट कट

मानुख की टेक वृथि सब जान, जिसके दिए रहे अकाए, मारे राखे को आप, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, उस्तत मन में कर निरंकार, निर्मल रसना अमृत पियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, चरण चलो मार्ग गोविंद, कर हर कर्म सर्वन हर कथा, बड़ पागी ते जन जग माहे, राम नाम जो करे विचार, मन तन मुख बोले हर मुखी, एको एक एक पछाने, नाम संग जिसका मन मानिया, गुर प्रसाद अपने आप सूजे, साध संग हर हर जस कहत, आंदन कीर्तन केवल बखियान, एक ऊपर जिस जन की आसा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, सोधत सोधत सोधत सीजिया, जब देखो तब सब किश मूल, न किश जन्मे न किश मरे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आपे आप सगल में आप, अविनाशी नाही किश खंड, अलख अपे पुरख प्रताप, जैन प्रभ जाता सो सोभा बंत, प्रभ के सेवक सगल उदारन, आपे मेल लय कृपाल, उनकी सेवा सोई लागे, नाम जपत पावे विश्राम। सदा सदा बस जो किश करे सु प्रभ के रंग, सह सभाए हो वैसो होए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए,